0: आप क्या कोई चुहा
1: कैसी जगह? कैसी नगर? कैसी नगर?
0: नो सर,
1: नो सर।
0: तुम्हें चुहा भी खेलता?
1: माला शायद तुम जानती नहीं हो।